0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 4 एक बड़ी पकड़ संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया में इस सवाल पर भी विचार मंथन किया गया है कि रोम के धर्माध्यक्ष अपनी प्रेरिताई का निष्पादन किस रूप में करते हैं। सिनोडालिटी अपने में सभी सामुदायिक धर्माध्यक्षीय मंडल और व्यक्तिगत रूप में स्थानीय कलिसिया और पूरी कलिसिया के बातों को एकात्मक रूप में व्यक्त करती है। इसके प्रकाश में हम पेत्रुस की प्रेरिताई को सिनोडल गतिशीलता में निहित पाते हैं, जैसे कि सामुदायिक आयाम में होती है, जहां हम पूरी ईश प्रजा और धर्माध्यक्षीय मंडल की प्रेरिताई को पाते हैं। इस भांति हम परिषद के पुष्ट सीमा को समझ सकते हैं कि कलिसियाई एकता के अंदर कानूनी रूप में कुछ खास कलिसियाएं हैं जो अपनी परंपराओं का अनुपालन करते हैं, जबकि परम धर्मपीठ की प्रधानता अपने में कायम रहती है, जो करुणा के सार्वभौमिक एकता की अध्यक्षता करती और वैध मतभेदों की रक्षा करती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखती है कि जो विशेष है वह एकता को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसके लिए अनुकूल हो। रोम के धर्माध्यक्ष जो कलिसिया की एकता के मूलभूत आधार हैं, हमारे लिए सिनोडालिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। यह वे हैं जो कलिसिया में सिनोड का आह्वान करते और उसकी अगुवाई करते हुए उसके परिणामों की पुष्टि करते हैं। संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी स्वरूप विश्वास और नैतिकता की रक्षा करना उनकी एक विशेष जिम्मेदारी बनती है। वे इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि सिनोडल प्रक्रिया हमें एकता और साक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। रोम के धर्माध्यक्ष संघ मिलकर धर्माध्यक्षकों की मंडली की यह एक अपरिहार्य जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरी कलिसिया की देखरेख करें और पूरे स्थानीय कलिसिया में सिनोडालिटी को प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, विविधता में एकता के जिम्मेदार व्यक्ति स्वरूप रोम के धर्माध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं की पहचान सदैव बरकरार रहती हो और सदियों से चली आ रही उनका पुरातन ईश शास्त्र, कलिसियाई कानून, धर्म विधि, आध्यात्मिक और प्रेरितिक परंपराओं का सम्मान किया जाता हो। इन कलिसियाओं के संबंध में हम उनकी स्वयं में सिनोडल स्वरूप को देखते हैं, जो पूर्वी रीति की कलिसियाई कानूनों की संहिता में विधिवत संलग्न है। प्राधि धर्माधर्शकों की कलिसिया की धर्म सभा, धर्म प्रांतीय प्राधि धर्माधर्शकों की धर्म सभा, प्रांतीय धर्म सभा, पुरोहितों का परिषद और अंत में विभिन्न स्वतंत्र कलिसियाओं के पुरोहितों का संगठन। आत्मनिर्भर कलिसियाओं के रूप में जो रोम के धर्माध्यक्ष संघ पूर्ण एकता में बने रहते हैं, वे अपनी पहचान और स्वायत्तता हेतु पूर्वी रीति के कलिसियाओं के संग जुड़े रहते हैं। सिनोडालिटी के स्वरूप में यह उचित है कि इतिहास पर एक साथ मिलकर पुनर्विचार किया जाए, जिससे पुराने घावों की चंगाई हो और हम एकता में अधिक गहराई से जीवन यापन कर सकें। इसका अर्थ हमारे लिए यह है कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं और रोमन कोरिया अपने संबंधों की समयोजना पर विचार करें। लातिनी रीति और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के मध्य संबंधों की विशेषता हमें उपहारों के आदान प्रदान, सहयोग और आपसी समृद्धि की मांग करती है। श्रोताओं, इन संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में सिनोडल धर्म सभा हमें आचार्यों के परिषद गठित करने की मांग करती है। महाधर्माधीक्षकों और पूर्वी रीति कलिसियाओं के अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई संत पापा द्वारा की जाती है, जो हमारे लिए सिनोडालिटी और एकता को प्रोत्साहित करने की एक अभिव्यक्ति होती है। परिषद की भूमिका धर्म विधि, ईश शास्त्रीय, कानूनी और आध्यात्मिक विरासत को साझा करने का एक माध्यम बने। पूर्वी रीति विश्वासियों का लातिनी रीति के प्रांतों में पलायन करना उनकी पहचान को खतरे में डालने की जोखिम उत्पन्न करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए लातिनी कलिसिया और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के बीच सहयोग को जितना हो सके मजबूत बनाने के तरीके और नियमों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। सिनोडल आम सभा लातिनी और पूर्वी रीति के धर्माधीक्षकों के बीच सच्ची वार्ता और भाईचारे वाले सहयोग की सलाह देती है, ताकि उन पूर्वी रीतियों के विश्वासियों के लिए बेहतर पुरोहितिक देखभाल पक्की हो सके, जिनके पास अपने रीति रिवाज के पुरोहित नहीं है। और इसके साथ ही स्वतंत्रता में पूर्वी रीति के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की भागीदारी की गारंटी दी जा सके। अंततः धर्म सभा यह प्रस्तावित करती है कि संत पापा पूर्वी रीति की कलिसियाओं को मजबूत करने और फिर से फलने फूलने के लिए एक विशेष आम सभा का आयोजन करें। श्रोताओं, संत पापा की प्रेरिताई के संबंध में धर्म सभा इस बात को प्रस्तावित करती है कि हमें एक उचित विकेंद्रीकरण के भाव को अपनाने की जरूरत है, जिसकी चाह संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सामने रखा। प्रेरितिक पत्र सुसमाचार की घोषणा प्रेडिकाते एवेंजेलियम के अनुसार यह विकेंद्रीकरण का अर्थ धर्माध्यक्षकों की योग्यता के अनुरूप समाधान के अधिकार को छोड़ा जाए। शिक्षक और पुरोहित के तौर पर अपने सही कामों को करते हुए वे उन मुद्दों को समझते हैं जिनसे वे वाकिफ हैं और जो कलिसिया के सिद्धांत, अनुशासन और मिलन की एकता पर असर नहीं डालते। वे हमेशा मिलकर जिम्मेदारी की उस भावना के साथ काम करते हैं जो कलिसिया के मिनिस्टीरियम कम्युनियोनिस पर आधारित है। इस दिशा पर विकास करते हुए कोई इस शास्त्रीय और कलिसियाई कानूनी संहिता की दिशा में एक अध्ययन किया जा सकता है जो इस बात की खोज करता है जिसके संबंध में संत पापा का संबोधन जरूरी है और उन्हें धर्माध्यक्ष गण अपने कलिसिया या छोटे समुदाय में घोषित कर सकते हैं। यह स्वयं से प्रेरित मोतु प्रोप्रियो दस्तावेज कॉम्पिटेंटियास क्वासडम डिसेनेरे के अनुरूप हो। यह दस्तावेज कलिसिया में अनुशासन की एकता और स्थानीय कलिसियाओं और कलिसियाई संस्थानों में कार्य अधिकार को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए नियमों के संबंध में कलिसियाई एकता का आयाम पर आधारित है। यहाँ तक कि कानूनी नियमों को भी उन लोगों द्वारा सिनोडल शैली में विकास किया जाना चाहिए जिनके पास संबंधित जिम्मेदारी और अधिकार हैं, तथा उन्हें कलिसिया की आत्मपरख के फल स्वरूप परिपक्व होने देना चाहिए। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमधम पीठ ने दुनिया के कृषि खाद्य प्रणालियों पर युद्ध, बंदी, जलवायु घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव पर खेद प्रकट किया है और स्थानीय खाद्य प्रणालियों से मानवीय गरिमा को अपने केंद्र में रखने का आह्वान किया है। फाओ, इफाड और WFP के स्थायी पर्यवेक्षक मोनसिन्योर फर्नांडो कीका अरेलानो ने कृषि खाद्य प्रणाली में मजबूती के लिए वैटिकन की अपील दोहराई। उन्होंने मंगलवार को तजकिस्तान के दुशांबे में हुए यूरोप के लिए UN खाद्य और कृषि संगठन के रीजनल कॉन्फ्रेंस के 35वें सत्र को संबोधित किया। मोनसिन्योर कीका ने कृषि खाद्य सिस्टम को बढ़ावा देने के कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य का समर्थन किया कि किसी को भोजन की कमी ना हो, ताकि उन्हें एक शांत एवं पूर्ण जीवन जीने में मदद मिले। उन्होंने हाल के वैश्विक संकटों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के महत्व पर जोर दिया। अंततः मोनसिन्योर ने कहा कि कृषि खाद्य उत्पादन में इंसान की इज्जत को केंद्र में रखना चाहिए, भविष्य से समझौता किए बिना खाने की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और स्थानीय स्तर पर अच्छे काम को बढ़ावा देना चाहिए। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले वैटिकन विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक एवं प्रशिक्षु, जिनमें विदेश में काम करने वाले सदस्य भी शामिल हैं, रोम में एक हफ्ते के लिए एकत्रित हुए ताकि वे आपस में अपनी बातें साझा कर सकें एवं नए सुझाव रख सकें। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि इसका मकसद पूरी दुनिया में पोप और धर्मदक्षों के मिशन का समर्थन करना है। 23 से 30 अप्रैल तक समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले परमधम पीठ विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक और प्रशिक्षु पहल साझा करने और सुझाव देने के लिए रोम स्थित विभाग के मुख्यालय पलाजो सैन कैलिस्टो में एक साथ जमा हुए। इस दौरान उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें तथाकथित विदेश के सहकर्मी भी शामिल थे जो रोम से बाहर काम करते हैं। मुख्य कार्यक्रमों के साथ साथ वैटिकन संग्रहालय का दर्शन, बोर्गो लाउदातो सी का दौरा और संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में पोप लियो 14वें के देवदूत प्रार्थना में हिस्सा लेना भी शामिल था। गहन सप्ताह की परंपरा 2023 में शुरू हुई और तब से नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाती है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने इस आयोजन के 3 मुख्य लक्ष्य बताए। अभी के समय में विभाग के मिशन को फिर से समझना, अच्छी तरह काम करने के लिए आंतरिक संपर्क को मजबूत करना और मुख्यालय में काम करने वालों तथा बाहर काम करने वालों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, जिससे विभाग की सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जिन मुद्दों पर बातें हुई उनके बारे में कार्डिनल प्रीफेक्ट ने कहा कि विभाग ऊपर से प्राथमिकता तय नहीं करता, बल्कि स्थानीय कलीसिया की सुनता और उनकी स्थिति में समग्र मानव विकास में रुकावट डालने वाली चीजों को दूर करने के उनके मिशन में अपना साथ देता है। इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए विभाग की सचिव सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली ने इस हफ्ते को रोज के काम से अवकाश लेने और ऊर्जा वापस लाने का समय बताया। उप सचिव मोनसिन्योर जोसे बरलास ने इस बात पर जोर दिया कि रोम से बाहर रहकर काम करना सिर्फ एक रसद संबंधी मामला नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर कोने में मौजूद कलीसिया की एक छवि है। कार्यक्रम के अंत में कार्डिनल चर्नी ने हिस्सा लेने वालों से दुनिया के अलग अलग इलाकों में आ रही मुसीबतों का सामना करते हुए सावधान और सहयोगी बने रहने की अपील की, साथ ही उदास सेवा के लिए विभाग के साथ सहयोग के नए तरीकों की उम्मीद जताई। उन्होंने कैमरून के प्रेरितिक यात्रा के दौरान मध्य अफ्रीकी कार्तिक यूनिवर्सिटी में पोप लियो 14वें के भाषण का एक हिस्सा भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि असल में कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह सही विवेक पर आधारित ना हो। पोप के बताए इस नजरिए से कार्डिनल ने कहा, विभाग के दैनिक कार्यों को प्रेरितिक सेवा और एक चुनौती दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। जॉर्जिया की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पौत्र सिनड ने 11 मई को पूरे जॉर्जिया के लिए एक कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष का चुनाव किया। अति मान्य ने शियो तृतीया को समस्त जॉर्जिया के लिए कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के मौके पर क्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट
कार्डिनल कूट कोच ने बधाई का संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने नए प्राधिधर्माध्यक्ष के यीशु ख्रिस्त के झुंड की देखभाल करने के बुलावे की अहमियत पर जोर दिया है और उम्मीद जताई है कि उनकी प्रेरिताएं हमारी कलीसिया के बीच एकता, उदारता और भ्रातृत्व के समाज को मजबूत करने में मदद करेगी। सऊदी अरब में 200 इथियोपियाई अप्रवासियों को फांसी की सजा मिलने वाली है। ऐसे में आदिग्रास के कार्तिक धर्मगुरु अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बातचीत एवं रहम की अपील कर रहे हैं। खबर है कि सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इथियोपियाई मूल के 200 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है, जिनमें से ज्यादातर जवान हैं। कुछ दिनों पहले ऑनलाइन समाचार पत्र अदी स्टैंडर्ड ने तीगरे युवा कार्यक्रम के आंकड़े का हवाला देते हुए यह समाचार दी थी। मानवाधिकार देखभाल, जो मानव अधिकार रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, सीधे तौर पर इस संख्या की पुष्टि नहीं कर सकी है, लेकिन उसने बताया है कि 65 इथियोपियाई अप्रवासी जो पहले से ही ड्रग तस्करी और उसे रखने से जुड़े अपराधों में दोषी पाए जा चुके हैं, इस समय खामिस मुशा जेल में बंद हैं। खबर है कि 21 अप्रैल को मौत की 3 सजाएं दी गईं। मानवाधिकार देखभाल इन 3 कैदियों की स्थिति से परिचित सूत्रों से संपर्क करने में कामयाब रहा, जिन्होंने बताया कि वे शरणार्थी हैं। खबर है कि वे 2020 और 2022 के बीच टाइग्रे क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष के दौरान भाग गए थे, जहां आज भी मानवीय स्थिति बहुत खराब है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने खतरनाक पूर्वी रास्ता लिया, जो जिबूती और यमन से होकर गुजरा, और फिर वे अपनी अंतिम मंजिल पहुंचे और 2023 एवं 2024 के बीच सऊदी पुलिस ने उन्हें आभा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया, जहां वे काम कर रहे थे। उनके पास जो चीजें मिली वह खात है, एक पौधा जो सऊदी अरब में प्रतिबंधित है, जहां ड्रग्स से जुड़े बहुत सख्त कानून है। खात पूर्वी अफ्रीका की एक झाड़ी है, जिसकी पत्तियों को चबाने पर ड्रग जैसा उत्तेजक असर होता है। 5 मई को अधिग्रहित के कार्तिक धर्माध्यक्ष टेस्फा सेलासी मेतिन ने मानव प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवीय एजेंसियों से दिल से अपील करते हुए 200 कैदियों की जान बचाने की मांग की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 4 एक बड़ी पकड़ संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया में इस सवाल पर भी विचार मंथन किया गया है कि रोम के धर्माध्यक्ष अपनी प्रेरिताई का निष्पादन किस रूप में करते हैं। सिनोडालिटी अपने में सभी सामुदायिक धर्माध्यक्षीय मंडल और व्यक्तिगत रूप में स्थानीय कलिसिया और पूरी कलिसिया के बातों को एकात्मक रूप में व्यक्त करती है। इसके प्रकाश में हम पेत्रुस की प्रेरिताई को सिनोडल गतिशीलता में निहित पाते हैं, जैसे कि सामुदायिक आयाम में होती है, जहां हम पूरी ईश प्रजा और धर्माध्यक्षीय मंडल की प्रेरिताई को पाते हैं। इस भांति हम परिषद के पुष्ट सीमा को समझ सकते हैं कि कलिसियाई एकता के अंदर कानूनी रूप में कुछ खास कलिसियाएं हैं जो अपनी परंपराओं का अनुपालन करते हैं, जबकि परम धर्मपीठ की प्रधानता अपने में कायम रहती है, जो करुणा के सार्वभौमिक एकता की अध्यक्षता करती और वैध मतभेदों की रक्षा करती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखती है कि जो विशेष है वह एकता को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसके लिए अनुकूल हो। रोम के धर्माध्यक्ष जो कलिसिया की एकता के मूलभूत आधार हैं, हमारे लिए सिनोडालिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। यह वे हैं जो कलिसिया में सिनोड का आह्वान करते और उसकी अगुवाई करते हुए उसके परिणामों की पुष्टि करते हैं। संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी स्वरूप विश्वास और नैतिकता की रक्षा करना उनकी एक विशेष जिम्मेदारी बनती है। वे इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि सिनोडल प्रक्रिया हमें एकता और साक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। रोम के धर्माध्यक्ष संघ मिलकर धर्माध्यक्षकों की मंडली की यह एक अपरिहार्य जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरी कलिसिया की देखरेख करें और पूरे स्थानीय कलिसिया में सिनोडालिटी को प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, विविधता में एकता के जिम्मेदार व्यक्ति स्वरूप रोम के धर्माध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं की पहचान सदैव बरकरार रहती हो और सदियों से चली आ रही उनका पुरातन ईश शास्त्र, कलिसियाई कानून, धर्म विधि, आध्यात्मिक और प्रेरितिक परंपराओं का सम्मान किया जाता हो। इन कलिसियाओं के संबंध में हम उनकी स्वयं में सिनोडल स्वरूप को देखते हैं, जो पूर्वी रीति की कलिसियाई कानूनों की संहिता में विधिवत संलग्न है। प्राधिधर्माधर्शकों की कलिसिया की धर्म सभा, धर्म प्रांतीय प्राधिधर्माधर्शकों की धर्म सभा, प्रांतीय धर्म सभा, पुरोहितों का परिषद और अंत में विभिन्न स्वतंत्र कलिसियाओं के पुरोहितों का संगठन। आत्मनिर्भर कलिसियाओं के रूप में जो रोम के धर्माध्यक्ष संघ पूर्ण एकता में बने रहते हैं, वे अपनी पहचान और स्वायत्तता हेतु पूर्वी रीति के कलिसियाओं के संग जुड़े रहते हैं। सिनोडालिटी के स्वरूप में यह उचित है कि इतिहास पर एक साथ मिलकर पुनर्विचार किया जाए, जिससे पुराने घावों की चंगाई हो और हम एकता में अधिक गहराई से जीवन यापन कर सकें। इसका अर्थ हमारे लिए यह है कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं और रोमन कोरिया अपने संबंधों की समयोजना पर विचार करें। लातिनी रीति और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के मध्य संबंधों की विशेषता हमें उपहारों के आदान प्रदान, सहयोग और आपसी समृद्धि की मांग करती है। श्रोताओं, इन संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में सिनोडल धर्म सभा हमें आचार्यों के परिषद गठित करने की मांग करती है। महाधर्माधीक्षकों और पूर्वी रीति कलिसियाओं के अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई संत पापा द्वारा की जाती है, जो हमारे लिए सिनोडालिटी और एकता को प्रोत्साहित करने की एक अभिव्यक्ति होती है। परिषद की भूमिका धर्म विधि, ईश शास्त्रीय कानूनी और आध्यात्मिक विरासत को साझा करने का एक माध्यम बने। पूर्वी रीति विश्वासियों का लातिनी रीति के प्रांतों में पलायन करना उनकी पहचान को खतरे में डालने की जोखिम उत्पन्न करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए लातिनी कलिसिया और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के बीच सहयोग को जितना हो सके मजबूत बनाने के तरीके और नियमों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। सिनोडल आम सभा लातिनी और पूर्वी रीति के धर्माधीक्षकों के बीच सच्ची वार्ता और भाईचारे वाले सहयोग की सलाह देती है, ताकि उन पूर्वी रीतियों के विश्वासियों के लिए बेहतर पुरोहितिक देखभाल पक्की हो सके, जिनके पास अपने रीति रिवाज के पुरोहित नहीं है, और इसके साथ ही स्वतंत्रता में पूर्वी रीति के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की भागीदारी की गारंटी दी जा सके। अंततः धर्म सभा यह प्रस्तावित करती है कि संत पापा पूर्वी रीति की कलिसियाओं को मजबूत करने और फिर से फलने फूलने के लिए एक विशेष आम सभा का आयोजन करें। श्रोताओं, संत पापा की प्रेरिताई के संबंध में धर्म सभा इस बात को प्रस्तावित करती है कि हमें एक उचित विकेंद्रीकरण के भाव को अपनाने की जरूरत है, जिसकी चाह संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सामने रखा। प्रेरितिक पत्र सुसमाचार की घोषणा प्रेडिकाते एवेंजेलियम के अनुसार यह विकेंद्रीकरण का अर्थ धर्माध्यक्षकों की योग्यता के अनुरूप समाधान के अधिकार को छोड़ा जाए। शिक्षक और पुरोहित के तौर पर अपने सही कामों को करते हुए वे उन मुद्दों को समझते हैं जिनसे वे वाकिफ हैं और जो कलिसिया के सिद्धांत, अनुशासन और मिलन की एकता पर असर नहीं डालते। वे हमेशा मिलकर जिम्मेदारी की उस भावना के साथ काम करते हैं जो कलिसिया के मिनिस्टीरियम कम्युनियोनिस पर आधारित है। इस दिशा पर विकास करते हुए कोई ईश शास्त्रीय और कलिसियाई कानूनी संहिता की दिशा में एक अध्ययन किया जा सकता है जो इस बात की खोज करता है जिसके संबंध में संत पापा का संबोधन जरूरी है और उन्हें धर्माध्यक्ष गण अपने कलिसिया या छोटे समुदाय में घोषित कर सकते हैं। यह स्वयं से प्रेरित मोतु प्रोप्रियो दस्तावेज कॉम्पिटेंटियास क्वासडम डिसेनेरे के अनुरूप हो। यह दस्तावेज कलिसिया में अनुशासन की एकता और स्थानीय कलिसियाओं और कलिसियाई संस्थानों में कार्य अधिकार को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए नियमों के संबंध में कलिसियाई एकता का आयाम पर आधारित है, यहाँ तक कि कानूनी नियमों को भी उन लोगों द्वारा सिनोडल शैली में विकास किया जाना चाहिए जिनके पास संबंधित जिम्मेदारी और अधिकार हैं, तथा उन्हें कलिसिया की आत्मपरख के फल स्वरूप परिपक्व होने देना चाहिए। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमधम पीठ ने दुनिया के कृषि खाद्य प्रणालियों पर युद्ध, बंदी, जलवायु घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव पर खेद प्रकट किया है और स्थानीय खाद्य प्रणालियों से मानवीय गरिमा को अपने केंद्र में रखने का आह्वान किया है। फाओ, इफाड और WFP के स्थायी पर्यवेक्षक मोनसिन्योर फर्नांडो कीका अरेलानो ने कृषि खाद्य प्रणाली में मजबूती के लिए वैटिकन की अपील दोहराई। उन्होंने मंगलवार को तजाकिस्तान के दुशांबे में हुए यूरोप के लिए UN खाद्य और कृषि संगठन के रीजनल कॉन्फ्रेंस के 35वें सत्र को संबोधित किया। मोनसिन्योर कीका ने कृषि खाद्य सिस्टम को बढ़ावा देने के कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य का समर्थन किया कि किसी को भोजन की कमी ना हो, ताकि उन्हें एक शांत एवं पूर्ण जीवन जीने में मदद मिले। उन्होंने हाल के वार्षिक संकटों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के महत्व पर जोर दिया। अंततः मोनसिन्योर ने कहा कि कृषि खाद्य उत्पादन में इंसान की इज्जत को केंद्र में रखना चाहिए, भविष्य से समझौता किए बिना खाने की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और स्थानीय स्तर पर अच्छे काम को बढ़ावा देना चाहिए। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले वैटिकन विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक एवं प्रशिक्षु, जिनमें विदेश में काम करने वाले सदस्य भी शामिल हैं, रोम में एक हफ्ते के लिए एकत्रित हुए ताकि वे आपस में अपनी बातें साझा कर सकें एवं नए सुझाव रख सकें। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि इसका मकसद पूरी दुनिया में पोप और धर्मदक्षों के मिशन का समर्थन करना है। 23 से 30 अप्रैल तक समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले परमधम पीठे विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक और प्रशिक्षु पहल साझा करने और सुझाव देने के लिए रोम स्थित विभाग के मुख्यालय पलाजो सैन कैलिस्टो में एक साथ जमा हुए। इस दौरान उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें तथाकथित विदेश के सहकर्मी भी शामिल थे जो रोम से बाहर काम करते हैं। मुख्य कार्यक्रमों के साथ साथ वैटिकन संग्रहालय का दर्शन, बोर्गो लाउदातो सी का दौरा और संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप लियो 14वें के देवदूत प्रार्थना में हिस्सा लेना भी शामिल था। गहन सप्ताह की परंपरा 2023 में शुरू हुई और तब से नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाती है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने इस आयोजन के 3 मुख्य लक्ष्य बताए। अभी के समय में विभाग के मिशन को फिर से समझना, अच्छी तरह काम करने के लिए आंतरिक संपर्क को मजबूत करना और मुख्यालय में काम करने वालों तथा बाहर काम करने वालों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, जिससे विभाग की सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जिन मुद्दों पर बातें हुई उनके बारे में कार्डिनल प्रीफेक्ट ने कहा कि विभाग ऊपर से प्राथमिकता तय नहीं करता, बल्कि स्थानीय कलीसिया की सुनता और उनके स्थिति में समग्र मानव विकास में रुकावट डालने वाली चीजों को दूर करने के उनके मिशन में अपना साथ देता है। इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए विभाग की सचिव सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली ने इस हफ्ते को रोज के काम से अवकाश लेने और ऊर्जा वापस लाने का समय बताया। उप सचिव मोनसिन्योर जोसेफ बर्लास ने इस बात पर जोर दिया कि रोम से बाहर रहकर काम करना सिर्फ एक रसद संबंधी मामला नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर कोने में मौजूद कलीसिया की एक छवि है। कार्यक्रम के अंत में कार्डिनल चर्नी ने हिस्सा लेने वालों से दुनिया के अलग अलग इलाकों में आ रही मुसीबतों का सामना करते हुए सावधान और सहयोगी बने रहने की अपील की, साथ ही उदार सेवा के लिए विभाग के साथ सहयोग के नए तरीकों की उम्मीद जताई। उन्होंने कैमरून के प्रेरित यात्रा के दौरान मध्य अफ्रीकी कार्तिक यूनिवर्सिटी में पोप लियो 14वें के भाषण का एक हिस्सा भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि असल में कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह सही विवेक पर आधारित ना हो। पोप के बताए इस नजरिए से कार्डिनल ने कहा, विभाग के दैनिक कार्यों को प्रेरित सेवा और एक चुनौती दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। जॉर्जिया की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पौत्र सिनड ने 11 मई को पूरे जॉर्जिया के लिए एक कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष का चुनाव किया। अति मान्य शियो तृतीया को समस्त जॉर्जिया के लिए कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के मौके पर क्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट
कार्डिनल कूट कोच ने बधाई का संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने नए प्राधिधर्माध्यक्ष के यीशु ख्रिस्त के झुंड की देखभाल करने के बुलावे की अहमियत पर जोर दिया है और उम्मीद जताई है कि उनकी प्रेरिताएं हमारी कलीसिया के बीच एकता, उदारता और भ्रातृत्व के संवाद को मजबूत करने में मदद करेगी। सऊदी अरब में 200 इथोपियाई अप्रवासियों को फांसी की सजा मिलने वाली है। ऐसे में आदिग्रास के कार्तिक धर्मगुरु अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बातचीत एवं रहम की अपील कर रहे हैं। खबर है कि सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इथोपियाई मूल के 200 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है, जिनमें से ज्यादातर जवान हैं। कुछ दिनों पहले ऑनलाइन समाचार पत्र अदी स्टैंडर्ड ने तीघ्र युवा कार्यक्रम के आंकड़े का हवाला देते हुए यह समाचार दी थी। मानवाधिकार देखभाल, जो मानव अधिकार रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, सीधे तौर पर इस संख्या की पुष्टि नहीं कर सकी है, लेकिन उसने बताया है कि 65 इथोपियाई अप्रवासी जो पहले से ही ड्रग तस्करी और उसे रखने से जुड़े अपराधों में दोषी पाए जा चुके हैं, इस समय खामिस मुशाद जेल में बंद हैं। खबर है कि 21 अप्रैल को मौत की 3 सजाएं दी गईं। मानवाधिकार देखभाल इन 3 कैदियों की स्थिति से परिचित सूत्रों से संपर्क करने में कामयाब रहा, जिन्होंने बताया कि वे शरणार्थी हैं। खबर है कि वे 2020 और 2022 के बीच टाइग्रे क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष के दौरान भाग गए थे, जहां आज भी मानवीय स्थिति बहुत खराब है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने खतरनाक पूर्वी रास्ता लिया, जो जिबूती और यमन से होकर गुजरा और फिर वे अपनी अंतिम मंजिल पहुंचे और 2023 एवं 2024 के बीच सऊदी पुलिस ने उन्हें आभा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया, जहां वे काम कर रहे थे। उनके पास जो चीजें मिली वह खात है, एक पौधा जो सऊदी अरब में प्रतिबंधित है, जहां ड्रग्स से जुड़े बहुत सख्त कानून हैं। खात पूर्वी अफ्रीका की एक झाड़ी है, जिसकी पत्तियों को चबाने पर ड्रग जैसा उत्तेजक असर होता है। 5 मई को अधिग्रहित के कार्तिक धर्माध्यक्ष टेस्फा सेलासी मेदिन ने मानव प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवीय एजेंसियों से दिल से अपील करते हुए 200 कैदियों की जान बचाने की मांग की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की

0: की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है।
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare
1: ये शब्द हमें इस बात को समझने हेतु निमंत्रण देते हैं कि कैसे मरियम पवित्र आत्मा के कार्य अनुरूप ईश्वर के पुत्र का स्वागत करती और उन्हें जन्म देती हैं जिन्होंने देह धारण किया। हम उन्हें सारी कलीसिया की एक प्रमुख सदस्य और माता दो आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से अपने को अंगीकृत होने देना जो उनमें पूरा होता है और विश्वास और अपने कुंवारे प्रेम में पवित्र आत्मा के उपहार का स्वागत करने के द्वारा मरियम अपने में पूरी कलीसिया के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, जो कलीसिया के लिए एक निमंत्रण है जिसके फलस्वरूप वह ईश्वरीय वाणी में एक श्रेष्ठ प्राणी स्वरूप पवित्र आत्मा की सुकोमल कार्य के माध्यम ईश्वर के संतानों के लिए एक माता होने को बुलाई जाती है। उससे भी बढ़कर वह अपने में एक विश्वासी है जिसमें हम सबों ने ईश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में अपने लिए दिव्य रहस्य हेतु एक शर्तहीन खुलेपन को पाया है। मरियम ख्रिस्तीय समुदाय की एक उत्कृष्ट सदस्य हैं। अंततः अपने संतानों को अपने बेटे के निकट लाने में जो हमारे बीच आए, मरियम पूरी कलीसिया की माता बनती हैं। हम उनकी ओर संतानों के रूप में विश्वास से आते हैं इस बात की निश्चितता में कि हम सोने जाएंगे, हमें सुरक्षा और प्रेम प्राप्त होगा। संत पापा लियो ने कहा,
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
1: हम कुमारी मरियम के इन गुणों को देखते हुए यह घोषित कर सकते हैं कि एक नारी के रूप में वह रहस्य की निशानी है। शब्द नारी हमारे लिए इसराइल की एक ऐतिहासिक सच्चाई युवा नारी के बारे में घोषित करता है जिन्हें मुक्तिदाता की माता बनने का एक अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। निशानी हमारे लिए इस तथ्य पर जोर देती है कि उनमें हम दो गतिशीलता उतरने और चढ़ने के भाव को पाते हैं। उनमें हम ईश्वर के शर्तहीन चुने जाने और विश्वास में उनके स्वतंत्र समर्पण को पाते हैं जो ख्रिस्त की ज्योति को दुनिया में लेकर आती है। मरियम इस भांति हमारे लिए वह नारी हैं जो रहस्य की निशानी है, अर्थात मुक्ति योजना की दिव्य निशानी जो एक समय छुपी रही और अब यीशु ख्रिस्त की पूर्णता में अपने को प्रकट करती है। संत पापा ने कहा कि धर्म सभा हमारे लिए इस बात को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है कि मुक्ति इतिहास में कुमारी मरियम का एक अद्वितीय स्थान सुरक्षित है। यह उन्हें यीशु से हमारे लिए मुक्ति की एकमात्र मध्यस्थता घोषित करती है और यह कि परम पवित्र माता किसी भी तरह से बाधा नहीं डालती, बल्कि मसीह के साथ विश्वासियों के तत्काल मिलन को बढ़ावा देती है। वहीं ईश्वरीय विधान की उस नीति से पहले ईश्वरीय दिव्यता में, जहां हम कुंवारी को शब्द के देह धारण माता स्वरूप देखते हैं, धन्य कुमारी मरियम इस अनोखे रूप में अपनी आज्ञाकारिता, विश्वास, आशा और अनंत प्रेम में उद्धारकर्ता के संग सहयोग करते हुए आत्माओं को पुनः अलौकिक जीवन प्रदान करती है। इसलिए वह कृपा के क्रम में हमारी माता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
1: कलिसिया के रहस्य को भी हम कुमारी मरियम में परिलक्षित होता पाते हैं। उनमें ईश प्रजा अपनी उत्पत्ति आदि

दर्श और अपने निवास को पाती है। ईश्वर की माता में कलिसिया स्वयं अपने रहस्य पर चिंतन करती है, इसलिए नहीं क्योंकि वह उनमें अपने शुद्ध विश्वास, मातृत्व में करुणा और दंपत्य विधान को पाती है, बल्कि उससे भी बढ़कर वह अपने स्वयं के आदर्श को पहचानती है जिसके लिए वह बुलाई गई है। संत पापा ने कहा कि हम देख सकते हैं कि लुमेन जेंसुम में संकलित बातों के अनुरूप कुमारी मरियम पर चिंतन करना हमें कलिसिया को प्रेम और उनमें ईश्वर के राज्य की पूर्णता हेतु कार्य करने का निमंत्रण मिलता है जो आने वाले हैं और जिसकी परिपूर्णता महिमा में होगी। संत पापा लियो ने कहा कि अतः आइए हम अपने को उस अद्वितीय आदर्श में मिले सवाल के बारे में पूछें जो हमें मरियम कुमारी और माता से प्राप्त हुआ है। हम उनसे सहायता की कामना करें, हम उनसे विचवई करें जिससे वे हमें पूछे गए सवाल का जवाब देने में मदद करें। क्या मैं कलिसिया में अपनी भागीदारी को विनम्र और सक्रिय विश्वास के साथ जीता हूँ? क्या मैं उनमें उस समुदाय के विधान को पहचानता हूँ जिसे ईश्वर मुझे अनंत प्रेम में उत्तर देने की मांग करते हैं? ईश्वर प्रदत्त चरवाहों के प्रति आज्ञाकारिता में क्या मैं कलिसियाई जीवन के अंग होने का अनुभव करता हूँ? क्या मैं मरियम को एक आदर्श के रूप में देखता हूँ, एक उत्कृष्ट सदस्य और कलिसिया की माता के रूप में तथा उनके बेटे के एक विश्वासी शिष्य होने के लिए मदद मांगता हूँ? प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा जो मरियम पर उतरे, जिन्हें हम नम्रता और पूर्ण विश्वास में पुकारते हैं, हमें इन आश्चर्यजनक सच्चाइयों को पूरा करने की कृपा प्रदान करें और कलिसिया के धर्म सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण चिंतन करने के उपरांत हम कुमारी मरियम से निवेदन करें कि वे हमें यह कृपा प्रदान करें कि हम सभोंग में माता कलिसिया के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 13 मई को आम दर्शन समारोह शुरू होने से पहले संत पापा लियो 14वें पापा मोबाइल में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के बीच से गुजर रहे थे और वे उसी जगह पर पापा मोबाइल से नीचे उतरे, घुटने टेक कर उस विशेष स्थान को स्पर्श किया जहां ठीक इसी दिन 1981 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था। समारोह के दौरान संत पापा ने इंग्लिश बोलने वालों का अभिवादन करते हुए कहा, आज हम फतिमा की माता मरियम का पर्व दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था और इन्हीं वजहों से मैंने आज अपनी धर्म शिक्षा धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित किया है। इस जगह पर एक सफेद संगमरमर का प्लेट लगा है जिस पर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का कोट ऑफ आर्म्स जड़ा हुआ है और इसे पत्थरों के बीच रखा गया है। हत्या की कोशिश के बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बार बार यह यकीन दिलाया कि कुंवारी मरिया की दुआ से उनकी जान बच गई थी। इस बारे में पुर्तगाली तीर्थ यात्रियों को अपने अभिवादन में संत पापा लियो 14वें ने सभी को फतिमा की माता मरियम के तीर्थालय की ओर देखने के लिए कहा, जहां उन्होंने 3 चरवाहे बच्चों को शांति का संदेश दिया था। वह जगह जो ख्रिस्तियों को बहुत प्यारी है, आज सभी 5 महाद्वीपों के कई तीर्थयात्री एकत्रित हुए हैं। उनकी मौजूदगी हमारे समय के लोगों के बीच सांत्वना, एकता और उम्मीद की जरूरत का संकेत है। आइए हम दुनिया के हर हिस्से से, खासकर युद्ध से परेशान लोगों से उठ रही शांति और मेलजोल की पुकार को कुंवारी मरिया के निष्कलंक हृदय को सौंप दें। 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय 13 मई को एक खुली सफेद जीप में आम दर्शन समारोह से पहले भक्तों का अभिवादन कर रहे थे, तभी उन पर पास से गोलियां चलाई गईं। संत पापा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत रोम के जमेली अस्पताल ले जाया गया। वाटिकन प्रेस ऑफिस से जारी एक बयान में बाद में पुष्टिकृत किया गया था कि संत पापा के पेट में गोली लगी थी और जमेली अस्पताल में उनका सर्जरी हो रहा था। बयान में यह भी कहा गया, हालांकि उनकी हालत गंभीर थी, फिर भी ठीक होने की पक्की उम्मीदें थी। 4 दिन बाद अस्पताल से स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भक्तों को संबोधित किया और हमले के लिए जिम्मेदार मेहमत अली आगा को सबके सामने माफ करने की बात कही। उन्होंने हमलावर के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया और खुद को एक बार फिर कुंवारी मरिया के सिपुर्द किया। इसके बाद के सालों में 13 मई 1981 की घटनाएं संत पापा की फतिमा की माता मरियम के प्रति भक्ति से जुड़ गई। 8 अप्रैल 2005 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने दिवंगत संत पापा की दुख और विश्वास की गवाही पर चिंतन किया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की आखिरी किताब याद और पहचान के कुछ पाठों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्यार से बदले गए दुख और ख्रीस्त के रहस्य से जुड़ने की बात कही। फिर संत पापा फ्रांसिस ने 12 मई 2021 को सालगिरह से एक दिन पहले आम दर्शन समारोह के दौरान हमले को याद किया। हमले की तारीख और फतिमा की माता मरियम के पर्व दिवस के बीच संबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत को याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी और दुनिया का इतिहास ईश्वर के हाथों में है। और 14 मई को संत पापा लियो 14वें रोम के सपियंसा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। इसी वजह से विश्वविद्यालय में माहौल बहुत उत्साह से भरा है। कल करीब 10:15 बजे संत पापा लियो 14वें सपियंसा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय के चैपल में संत पापा लियो 14वें कुछ देर प्रार्थना करेंगे, समुदाय का अभिवादन करेंगे और फिर बड़े हॉल में छात्रों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। विश्वविद्यालय के चैपलिन फादर गैब्रियल वैकियो ने कहते हैं, यह इंसानी दिलों का प्रयोगशाला है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के 1,25,000 छात्र हैं जो आने वाले कल को बनाएंगे। यहाँ हमारा मकसद 21वीं सदी के लायक एक समझदारी भरे नजरिए से विश्वास को जीना है।
उधर अमेरिकी व्हाइट हाउस के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म करने की राजनीतिक कोशिशें एक अहम मोड़ पर हो सकती हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लड़ाई का अंत बहुत करीब है। क्रेमलिन बुनियादी कदमों की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यूक्रेन में युद्ध का अंत बहुत करीब है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी संभावित शांति समझौते में पूरा डोनबास इलाका रूस को ट्रांसफर किया जाएगा। इन बातों की कुछ हद तक पुष्टि क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव से ज्यादा सावधान रुख से होती है, जिन्होंने कहा कि झगड़े को सुलझाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी खास तारीखों और मकसद पर बात करना जल्दबाजी होगी और अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। कीव ने किसी कामयाबी की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन की सप्लाई के लिए 20 देशों के साथ एक समझौते पर काम करने की रिपोर्ट दी है, जबकि वे एक पुराने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक से जुड़े एक और भ्रष्टाचार स्कैंडल से जूझ रहे हैं। यूरोप अपनी तरफ से यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखे हुए है। यूरोपीय संघ की फॉरेन पॉलिसी के शीर्ष प्रतिनिधि काजा कैलास ने घोषणा की कि कीव को जून में 90 बिलियन डॉलर के लोन की पहली किश्त मिलेगी। इस बीच जमीन पर पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों से 8 मौतें हुई और 11 घायल हुए। रात भर यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के लॉन्च किए गए 139 ड्रोन में से 111 को बेअसर कर दिया। रूसी सेना ने कल रात 286 यूक्रेनी ड्रोन को रोकने और नष्ट करने की भी रिपोर्ट दी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा ने कलिसिया के धर्म सिद्धांत लुमेन जेंटियम के अंतिम अध्याय को कुमारी मरियम के नाम समर्पित किया है। उन्हें कलिसिया का एक प्रमुख और अद्वितीय सदस्य के रूप में देखा जाता है। साथ ही वे विश्वास और करुणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये शब्द हमें इस बात को समझने हेतु निमंत्रण देते हैं कि कैसे मरियम पवित्र आत्मा के कार्य अनुरूप ईश्वर के पुत्र का स्वागत करती और उन्हें जन्म देती हैं जिन्होंने देह धारण किया। हम उन्हें सारी कलिसिया की एक प्रमुख सदस्य और माता, दो आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से अपने को अंगीकृत होने देना जो उनमें पूरा होता है, और विश्वास और अपने कुंवारे प्रेम में पवित्र आत्मा के उपहार का स्वागत करने के द्वारा मरियम अपने में पूरे कलिसिया के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, जो कलिसिया के लिए एक निमंत्रण है, जिसके फलस्वरूप वह ईश्वरीय वाणी में एक श्रेष्ठ प्राणी स्वरूप पवित्र आत्मा के सुकोमल कार्य के माध्यम ईश्वर के संतानों के लिए एक माता होने को बुलाई जाती है। उससे भी बढ़कर वह अपने में एक विश्वासी है, जिसमें हम सबों ने ईश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में अपने लिए दिव्य रहस्य हेतु एक शर्तहीन खुलेपन को पाया है। मरियम ख्रिस्तीय समुदाय की एक उत्कृष्ट सदस्य है। अंततः अपने संतानों को अपने बेटे के निकट लाने में जो हमारे बीच आए, मरियम पूरी कलिसिया की माता बनती हैं। हम उनकी ओर संतानों के रूप में विश्वास से आते हैं, इस बात की निश्चितता में कि हम सोने जाएंगे, हमें सुरक्षा और प्रेम प्राप्त होगा। संत पापा लियो ने कहा,
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
1: हम कुमारी मरियम के इन गुणों को देखते हुए यह घोषित कर सकते हैं कि एक नारी के रूप में वह रहस्य की निशानी है। शब्द नारी हमारे लिए इसराइल की एक ऐतिहासिक सच्चाई युवा नारी के बारे में घोषित करता है, जिन्हें मुक्तिदाता की माता बनने का एक अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। निशानी हमारे लिए इस तथ्य पर जोर देती है कि उनमें हम दो गतिशीलता, उतरने और चढ़ने के भाव को पाते हैं। उनमें हम ईश्वर के शर्तहीन चुने जाने और विश्वास में उनके स्वतंत्र समर्पण को पाते हैं, जो ख्रिस्त की ज्योति को दुनिया में लेकर आती है। मरियम इस भांति हमारे लिए वह नारी हैं जो रहस्य की निशानी हैं, अर्थात मुक्ति योजना की दिव्य निशानी, जो एक समय छुपी रही और अब यीशु ख्रीस्त की पूर्णता में अपने को प्रकट करती है। संत पापा ने कहा कि धर्म सभा हमारे लिए इस बात को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है कि मुक्ति इतिहास में कुमारी मरियम का एक अद्वितीय स्थान सुरक्षित है। यह उन्हें यीशु से हमारे लिए मुक्ति की एकमात्र मध्यस्थता घोषित करती है और यह कि परम पवित्र माता किसी भी तरह से बाधा नहीं डालती, बल्कि मसीह के साथ विश्वासियों के तत्काल मिलन को बढ़ावा देती है। वहीं ईश्वरीय विधान की उस नीति से पहले ईश्वरीय दिव्यता में, जहां हम कुंवारी को शब्द के देह धारण माता स्वरूप देखते हैं, धन्य कुमारी मरियम इस अनोखे रूप में अपनी आज्ञाकारिता, विश्वास, आशा और अनंत प्रेम में उद्धारकर्ता के संग सहयोग करते हुए आत्माओं को पुनः अलौकिक जीवन प्रदान करती है। इसलिए वह कृपा के क्रम में हमारी माता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
1: कलिसिया के रहस्य को भी हम कुमारी मरियम में परिलक्षित होता पाते हैं। उनमें ईश प्रजा अपने उत्पत्ति आदर्श और अपने निवास को पाती है। ईश्वर की माता में कलिसिया स्वयं अपने रहस्य पर चिंतन करती है, इसलिए नहीं क्योंकि वह उनमें अपने शुद्ध विश्वास, मातृत्व में करुणा और दंपत्य विधान को पाती है, बल्कि उससे भी बढ़कर वह अपने स्वयं के आदर्श को पहचानती है जिसके लिए वह बुलाई गई है। संत पापा ने कहा कि हम देख सकते हैं कि लुमेन जेंसियम में संकलित बातों के अनुरूप कुमारी मरियम पर चिंतन करना हमें कलिसिया को प्रेम और उनमें ईश्वर के राज्य की पूर्णता हेतु कार्य करने का निमंत्रण मिलता है जो आने वाले हैं और जिसकी परिपूर्णता महिमा में होगी। संत पापा लियो ने कहा कि अतः आइए हम अपने को उस अद्वितीय आदर्श में मिले सवाल के बारे में पूछें जो हमें मरियम कुमारी और माता से प्राप्त हुआ है। हम उनसे सहायता की कामना करें, हम उनसे विचवई करें जिससे वे हमें पूछे गए सवाल का जवाब देने में मदद करें। क्या मैं कलिसिया में अपनी भागीदारी को विनम्र और सक्रिय विश्वास के साथ जीता हूँ? क्या मैं उनमें उस समुदाय के विधान को पहचानता हूँ जिसे ईश्वर मुझे अनंत प्रेम में उत्तर देने की मांग करते हैं? ईश्वर प्रदत्त चरवाहों के प्रति आज्ञाकारिता में क्या मैं कलिसियाई जीवन के अंग होने का अनुभव करता हूँ? क्या मैं मरियम को एक आदर्श के रूप में देखता हूँ, एक उत्कृष्ट सदस्य और कलिसिया की माता के रूप में, तथा उनके बेटे के एक विश्वासी शिष्य होने के लिए मदद मांगता हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा जो मरियम पर उतरे, जिन्हें हम नम्रता और पूर्ण विश्वास में पुकारते हैं, हमें इन आश्चर्यजनक सच्चाइयों को पूरा करने की कृपा प्रदान करें और कलिसिया के धर्म सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण चिंतन करने के उपरांत हम कुमारी मरियम से निवेदन करें कि वे हमें यह कृपा प्रदान करें कि हम सभों में माता कलिसिया के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 13 मई को आम दर्शन समारोह शुरू होने से पहले संत पापा लियो 14वें पापा मोबाइल में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के बीच से गुजर रहे थे और वे उसी जगह पर पापा मोबाइल से नीचे उतरे, घुटने टेक कर उस विशेष स्थान को स्पर्श किया जहां ठीक इसी दिन 1981 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था। समारोह के दौरान संत पापा ने इंग्लिश बोलने वालों का अभिवादन करते हुए कहा, आज हम फतिमा की माता मरियम का पर्व दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर जानलेवा हमला हुआ था और इन्हीं वजहों से मैंने आज अपनी धर्म शिक्षा धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित किया है। इस जगह पर एक सफेद संगमरमर का प्लेट लगा है जिस पर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का कोट ऑफ आर्म्स जड़ा हुआ है और इसे पत्थरों के बीच रखा गया है। हत्या की कोशिश के बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बार बार यह यकीन दिलाया कि कुंवारी मरिया की दुआ से उनकी जान बच गई थी। इस बारे में पुर्तगाली तीर्थ यात्रियों को अपने अभिवादन में संत पापा लियो 14वें ने सभी को फतिमा की माता मरियम के तीर्थालय की ओर देखने के लिए कहा, जहां उन्होंने 3 चरवाहे बच्चों को शांति का संदेश दिया था। वह जगह जो ख्रिस्तियों को बहुत प्यारी है, आज सभी 5 महाद्वीपों के कई तीर्थयात्री एकत्रित हुए हैं। उनकी मौजूदगी हमारे समय के लोगों के बीच सांत्वना, एकता और उम्मीद की जरूरत का संकेत है। आइए हम दुनिया के हर हिस्से से, खासकर युद्ध से परेशान लोगों से उठ रही शांति और मेलजोल की पुकार को कुंवारी मरिया के निष्कलंक हृदय को सौंप दें। 45 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय 13 मई को एक खुली सफेद जीप में आम दर्शन समारोह से पहले भक्तों का अभिवादन कर रहे थे, तभी उन पर पास से गोलियां चलाई गईं। संत पापा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत रोम के जमेली अस्पताल ले जाया गया। वाटिकन प्रेस ऑफिस से जारी एक बयान में बाद में पुष्टिकृत किया गया था कि संत पापा के पेट

मई 1981 की घटनाएं संत पापा की फतिमा की माता मरियम के प्रति भक्ति से जुड़ गई। 8 अप्रैल 2005 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने दिवंगत संत पापा की दुख और विश्वास की गवाही पर चिंतन किया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की आखिरी किताब याद और पहचान के कुछ पाठों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्यार से बदले गए दुख और ख्रीस्त के रहस्य से जुड़ने की बात कही। फिर संत पापा फ्रांसिस ने 12 मई 2021 को सालगिरह से एक दिन पहले आम दर्शन समारोह के दौरान हमले को याद किया। हमले की तारीख और फतिमा की माता मरियम के पर्व दिवस के बीच संबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत को याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी और दुनिया का इतिहास ईश्वर के हाथों में है। और 14 मई को संत पापा लियो 14वें रोम के सपियंसा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। इसी वजह से विश्वविद्यालय में माहौल बहुत उत्साह से भरा है। कल करीब 10:15 बजे संत पापा लियो 14वें सपियंसा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय के चैपल में संत पापा लियो 14वें कुछ देर प्रार्थना करेंगे, समुदाय का अभिवादन करेंगे और फिर बड़े हॉल में छात्रों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। विश्वविद्यालय के चैपलिन फादर गैब्रियल वैकियो ने कहते हैं, यह इंसानी दिलों का प्रयोगशाला है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के 1,25,000 छात्र हैं जो आने वाले कल को बनाएंगे। यहाँ हमारा मकसद 21वीं सदी के लायक एक समझदारी भरे नजरिए से विश्वास को जीना है। उधर अमेरिकी व्हाइट हाउस के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म करने की राजनीतिक कोशिशें एक अहम मोड़ पर हो सकती हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लड़ाई का अंत बहुत करीब है। क्रेमलिन बुनियादी कदमों की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यूक्रेन में युद्ध का अंत बहुत करीब है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी संभावित शांति समझौते में पूरा डोनबास इलाका रूस को ट्रांसफर किया जाएगा। इन बातों की कुछ हद तक पुष्टि क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव से ज्यादा सावधान रुख से होती है, जिन्होंने कहा कि झगड़े को सुलझाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी खास तारीखों और मकसद पर बात करना जल्दबाजी होगी और अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। कीव ने किसी कामयाबी की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन की सप्लाई के लिए 20 देशों के साथ एक समझौते पर काम करने की रिपोर्ट दी है, जबकि वे एक पुराने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक से जुड़े एक और भ्रष्टाचार स्कैंडल से जूझ रहे हैं। यूरोप अपनी तरफ से यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखे हुए है। यूरोपीय संघ की फॉरेन पॉलिसी के शीर्ष प्रतिनिधि काजा कैलास ने घोषणा की कि कीव को जून में 90 बिलियन डॉलर के लोन की पहली किश्त मिलेगी। इस बीच जमीन पर पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों से 8 मौतें हुई और 11 घायल हुए। रात भर यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के लॉन्च किए गए 139 ड्रोन में से 111 को बेअसर कर दिया। रूसी सेना ने कल रात 286 यूक्रेनी ड्रोन को रोकने और नष्ट करने की भी रिपोर्ट दी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।